FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। श्रोताओं, आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर डीएनए प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। डीएनए प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिविहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल है। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ

0: हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है देश वंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। लाल किला हो या ताजमहल, सब बनाया हुआ हमारा है। हिंद के वासियों का नारा है, सबसे प्यारा वतन हमारा है।

सावेरी वर्मा का लिखा भक्ति गीत आपने सुना रावी मिश्रा, प्रशांत सातोस और सावेरी वर्मा के स्वर में। संगीत प्रशांत सातोस का था। श्रोताओं, आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी मात्र एक पर्व नहीं बल्कि जन जन की आस्था है और उदय है उत्सव आनंद और उल्लास का।

सावेरी वर्मा का लिखा भक्ति गीत आपने सुना अरुणिता कांजीलाल के स्वर में, संगीत श्रेया पौराणिक का था। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, श्री कृष्ण ने सहज भाव से जीवन जीते हुए समाज को प्रेम, बंधुत्व और करुणा का संदेश दिया। माँ यशोदा के साथ वात्सल्य, गोपियों और ग्वालों के साथ सख्य भाव, राधा रानी के साथ निस्वार्थ प्रेम और समस्त जीवों के साथ प्रेम और सम्मान का भाव कृष्ण की विशेषता है।

उदित नारायण और साथियों का गाया भक्ति गीत आपने सुना। रचना थी शार्दुल राठौर की और धुन तैयार की थी दिलीप सेन ने। श्रोताओं, चमत्कार और श्री कृष्ण तो परस्पर जुड़े हुए हैं। कारागार में जन्म होना और जन्म लेते ही माता देवकी और पिता वासुदेव से बिछड़कर गोकुल में यशोदा के ममत्व और नंद बाबा की छत्र छाया में पलना, सब कुछ असाधारण ही है।

0: विशाल बाघ की भक्ति रचना आपने सुनी तुलसी कुमार और साथियों की आवाज़ों में। संगीत निर्देशन राज आशु का था। और इसी के साथ आज की आराधना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हो चुके हैं। कार्यक्रम खेती की बात में आज जानकारी का विषय गेंदा फूल के खेती, और इस जानकारी का वाचन किया है नंद कुमार यादव ने।
1: किसान भाई हो, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, आज आप मन भर लेके आए हवन गोंदा फूल के उन्नत खेती के बारे में जानकारी। देखो संगवारी हो, साग सब्जी हमन लगाथन, फसल है, पेड़ पौधा है, रूख राई है, मछली पालन है, और अब्बड़ कन आनी बानी के जिनिस हमन फसल के रूप में लेथन पालन करथन। वैसने आज हमन कहूँ गोंदा फूल के खेती करत हन तो एकर अब्बड़े कन फायदा रहते। गाड़ी घोड़ा ला सजाए बर कई देवा के, पूजा पाठ में एकर उपयोग ला कई देवा के, हमन जौन फसल लगाए हन तेमा कीरवा ला पकड़े बर कई देवा तो गोंदा फूल हर बढ़िया माने जाते। गोंदा फूल मा बड़कन जौन किस्म है तेमा दो किस्म हर बढ़िया होते, अफ्रीकी गेंदा और फ्रेंच गेंदा। संगवारी हो, एकर जौन खेती है तेन हर कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इति बर बढ़िया ले होते। जलवायु के बात करें तो गोंदा फूल लगात हन तो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होते। माटी जौन है तो पानी निकासी वाला माटी हर तो बनेच माने जाते। फिर माटी के जौन पीएच मान है तेन हर 6.5 से 7.5 रहना चाहिए। अफ्रीकी गेंदा के किस्म बर उच्च जैविक खातु डालत हन माटी में बढ़िया ले तो सुघर होते। अफ्रीकन मेरी गोल्ड नाव के जौन किस्म आते तेनो हर बने रहते। फ्रेंच मेरी गोल्ड, पूसा बसंती गेंदा, नारंगी गेंदा ए नाव के किस्म मन बढ़िया रहते। भूइया के तैयारी करे बार माटी के जौन जोताई हवे तेला भुरभुरा होत तक करत हन तो बढ़िया रही। माटी के उपजाऊ शक्ति ला बढ़ाए बार आखिरी जोताई के बेरा 250 क्विंटल सरहा गलहा गोबर के खातु ला बढ़िया ले मिला के देना चाहिए। संगवारी हो, एकर बुवाई के जौन बेरा है तेन हर अभी के बेरा हर सुघर होती। 1 एकड़ के खेती करे बर 600 से 800 ग्राम बीजा के आवश्यकता हर होते। बीजा ला उपचारित करे बर बुवाई करे के पहली एजोस्पाइरियम 200 ग्राम ला 500 मिलीलीटर धान के चूरा में मिला के उपचारित करत हन तो बनी रही। संगवारी हो, खातु माटी के घलाव व्यवस्था करे बर लगते जेमा नाइट्रोजन 32 किलोग्राम, फास्फोरस 16 किलोग्राम, पोटास 32 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर ले देना चाहिए। माटी के किस्म के अनुसार खातु के खुराक ला हमन बदल सकत हन। सही खुराक देहे बर माटी के जांच करवा लेवय और ओकर आधार में हमन खातु माटी के व्यवस्था करत हन तो बढ़िया रही। संगवारी हो, खेत में रोपाई के तुरते बाद सिंचाई के काम बुतला कर लेवय। कली बने ले लेके कटाई तक के अवस्था में सिंचाई हर अब बड़े जरूरी होते। ज्यादा जानकारी बर कृषि वैज्ञानिक के सलाह लेके फसल ला लगाथन तो सुघर रही। एकरे संग जय जोहार, राम राम।
0: कार्यक्रम खेती की बात में अभी आप गेंदा फूल के खेती विषय पर जानकारी सुन रहे थे। वाचन

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए पेश है रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायक कलाकार सुरेश वाटकर, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती राम विरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आगाते।

रामचरित मानस का गायन अभी आप सुन रहे थे। मुख्य गायक कलाकार थे सुरेश वाटकर। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 6:45 होने वाले हैं। कार्यक्रम नवविहान के अंतर्गत आज हम आपसे चर्चा करेंगे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में।

श्रोताओं, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की जयंती पर की गई थी। ये मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश को खुले में शौच मुक्त यानी ODF बनाना और वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन करना है। यह मिशन मुख्य रूप से दो भागों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी में बंटा है। पहला चरण, जो कि 2014 से 2019 तक था, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ और देश को खुले में शौच मुक्त यानी ODF घोषित करने की दिशा में ऐतिहासिक सफलता मिली।

इस अभियान के दूसरे चरण में ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना तथा गांव और शहरों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। दूसरा चरण 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। इसका संचालन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरों की गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों को साफ रखने के लिए किया जाता है।

श्रोताओं, स्वच्छ भारत मिशन देश का सबसे बड़ा स्वच्छता आंदोलन है, जिसका उद्देश्य नागरिकों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना, स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना और स्वच्छता के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाना है।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन SBM नागरिक पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

श्रोताओं, ये मिशन अब साधारण स्वच्छता से आगे बढ़कर ODF प्लस और कचरा मुक्त शहरों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक स्वच्छ भारत

कार्यक्रम नवविहान के अंतर्गत अभी आप स्वच्छ भारत अभियान के बारे में छोटी सी जानकारी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त होता है कार्यक्रम विवरण का। सुबह 8:30 पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। रायपुर केंद्र से ही रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार सुबह 9:55 पर और 11:55 पर। कार्यक्रम गांधी चर्चा का प्रसारण समय सुबह 7:20 पर। आज का विषय, कोई कार्य छोटा नहीं होता। वाचन स्वर हरिश्चंद्र वाद्यकार का होगा।

कार्यक्रम आज सुबह आप सुनेंगे, सुबह 7:05 पर यादों के झरोखे से। पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद पेश करेंगे सुबह 10:30 पर। गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम का प्रसारण समय सुबह 10 बजे। आज आप सुनेंगे बांस गीत में प्रसंग राजा महर सिंह का किस्सा। गायक कलाकार होंगे सेवक राम यादव, देव नारायण, रामनाथ यादव और साथी। साथी सुनेगा पंडवानी। प्रसंग होगा माता गंगा और शांतनु विवाह का किस्सा, और इससे आप सुनेंगे अक्ति निषाद और साथियों के स्वर में। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण समय सुबह 11 बजे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे सुबह 9 बजे से 9:55 तक, 11:30 से 11:55 तक, 12 बजे से शाम 5 बजे तक, और फिर रात 9:15 से रात 11 बजे तक।

शाम 5 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। चित्रपट संगीत शाम 5:05 पर। ईमेल करें गीत सुने शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे कार्यक्रम रजनीगंधा रात 8:15 पर प्रसारित किया जाएगा। शाम 5:35 पर युवा जगत कार्यक्रम में आज की बात में विषय होगा दान और दया। बाह्य ध्वन्यांकन पर आधारित रिकॉर्डेड कार्यक्रम आप सुनेंगे क्रम मेरी बारी। साथ ही सुनेगा छोटी सी चर्चा दादा भाई नौरोजी का जीवन दर्शन इस विषय पर।

ग्राम सभा कार्यक्रम में शाम 7:30 पर बेरा की गोठ में चर्चा का विषय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।

फोन इन कार्यक्रम में विषय होगा कटहल की आधुनिक खेती। विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शुक्ला, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के। और इस फोन इन कार्यक्रम का संचालन महंगू भैया ने किया है। साथ ही सुनिएगा गीत, मौसम, मंडी की जानकारी और किसान भाई बहनों को सामयिक सुझाव भी दिए जाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे आज गायक कलाकार होंगे अली हैदर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, पहले संस्कृत और फिर हिंदी में।

0: क्रीडायां भारतं हांगकांग दलं सप्तत्रिंशदधिक एकशत धावनांकैः पराजित्य उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनोसिस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-05 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जाँच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबीहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है, उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण चालकों में से एक होगा। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि द्वारिका में जन्माष्टमी मनाने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत ने चीन की हांगकांग टीम के विरुद्ध महिला क्रिकेट एशिया कप के सातवें मैच में 137 रन से बड़ी जीत हासिल की है। इसी के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह

0: मनाली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कल टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी के दम पर 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आज सुबह।

0: आज सुबह।
1: श्रोताओं, आज है जन्माष्टमी का त्यौहार। भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को मथुरा के कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अधर्म को समाप्त करने और सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था और सत्य तथा धर्म की स्थापना की थी। ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत और भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। भगवान की पूजा के साथ साथ कृष्ण की बाल लीलाओं को याद करते हुए कई जगहों पर दही हांडी का उत्सव भी मनाया जाता है। सभी सुनने वालों को जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और आज सुबह कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सीमा साहू।

श्रोताओं, भारत में प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। हमारे देश में कुपोषण से निपटने और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए 1982 में खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार, अच्छे स्वास्थ्य और सही पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करना है और कुपोषण को खत्म करना भी है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें बताता है कि स्वस्थ शरीर और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए सही खाना कितना जरूरी है। यह सप्ताह लोगों को भरपेट भोजन करने के बजाय पौष्टिक और संतुलित आहार चुनने के लिए प्रेरित करता है। श्रोताओं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाने का लक्ष्य समुदायों को यह शिक्षित करना है कि उचित आहार और पौष्टिक भोजन किस प्रकार रोगों की रोकथाम करते हैं और समग्र विकास में सहायक होते हैं। इसके अलावा पूरे सितंबर महीने को हम राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में भी मनाते हैं। साबुत अनाज, मौसमी फल और हरी सब्जियों को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर संतुलित आहार को बढ़ावा दें। पैकेट बंद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन कम से कम करें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। श्रोताओं, हर साल ये सप्ताह एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए विषय है पोषण की शक्ति की खोज करें। इस सप्ताह के जरिए बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह सप्ताह

0: जंक फूड छोड़कर पौष्टिक और घरेलू भोजन अपनाने की प्रेरणा देता है। और अब आइए आज सुबह कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार, ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर्व को सभी बड़े ही हर्ष एवं उल्लास के साथ मना रहे हैं। मंदिरों में श्री कृष्ण झूला का भी आयोजन किया गया है। इस परिवेश में आज हमेशा की तरह वेंकटेश मंदिर में भव्य आयोजन किया गया है। शाम से लेकर अर्धरात्रि तक यहाँ स्त्री पुरुष बच्चों की कतार लगी रहती है। यद्यपि यहाँ पर यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा, फिर भी आप व्यवस्था बनाए रखने अपने दो पहिया वाहनों को व्यवस्थित रखें, न कि सड़कों में अस्त व्यस्त। आज जगह जगह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मटकी फोड़ और मलखम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मटकी फोड़ने वाली टोलियां बाजे गाजे के साथ नाचते गाते चलती हैं, किंतु कुछ टोलियां नियमों के विपरीत डीजे भी बजाते चलती हैं। उन्हें इस संदेश के माध्यम से सख्त चेतावनी है, ये गलती भूल कर न करें। डीजे पर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसको उपयोग करने पर वाहन सहित तत्काल जब्ती की कार्यवाही की जाती है, इसलिए नियमों के अनुसार चलते हुए उत्सव का भरपूर आनंद लेवें। मटकी फोड़ने वाली टोलियां एक ही स्थान पर बहुत अधिक देर तक न रुके, ऐसा करने से यातायात जाम होता है, लोग परेशान होते हैं। साथ ही मटकी बांधकर लटकाने वाली टीम सुरक्षा व्यवस्था आदि की नजर से अधिक ऊंचाई पर मटकी न बांधे, यह खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा टोली के सभी सदस्य यह भी ध्यान रखें रास्ते में फटाके ना फोड़ें, यह भी खतरे से खाली नहीं है। मटकी फोड़ते समय बच्चों को दूर ही रखें। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व से जुड़ी वस्तुओं की शहर में तमाम दुकानें लगी हैं। पूर्व में हिदायत के बावजूद कुछ अव्यवस्था संतोषी दुकानदार सड़कों तक अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। सचेत रहें, ऐसे लोगों पर विधि संगत कार्रवाई होना तय है। अतः सभी से अनुरोध है व्यक्तिगत लाभ के लिए पूरे शहर में यातायात अव्यवस्था न फैलाएं। ये विधि और मानवता दोनों के विपरीत है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट। श्रोताओं, इसे आप एक बार फिर से सुन पाएंगे कार्यक्रम आपकी पसंद के दौरान 10:30 से 11 बजे के बीच। श्रोताओं, अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बता दें आज है राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मुख्य रूप से वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। ये दिवस हर साल आज ही के दिन यानी 4 सितंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य लुप्त प्राय प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ये दिन जानवरों और उनके आवासों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस दिवस की शुरुआत 2005 में कॉलिन पेज द्वारा की गई थी, जो कि पशु कल्याण और संरक्षण विशेषज्ञ हैं। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये संदेश।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: श्रोताओं, दादा भाई नवरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक नेता, विद्वान और अर्थशास्त्री थे, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नवरोजी 1892 में यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से ये समझाया कि कैसे ब्रिटिश नीतियां भारत की संपत्ति और धन को चूस रही हैं और देश को गरीब बना रही हैं। उन्होंने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज को भारत का मुख्य राजनीतिक लक्ष्य घोषित किया। 1825 में आज ही के दिन जन्म हुआ था भारत के पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता दादा भाई नवरोजी जी का। उन्हें आज हम याद करते हैं। श्रोताओं, 2016 में आज ही के दिन यानी 4 सितंबर को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी गई थी। भारत रत्न और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित ईसाई रोमन कैथोलिक नन एवं संत मदर टेरेसा का जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था। मात्र 18 साल की उम्र में दीक्षा लेकर वे सिस्टर टेरेसा बनी थी। फिर वे भारत आकर ईसाई ननों की तरह अध्यापन से जुड़ गईं। बाद में उन्होंने समाज सेवा का रास्ता अपनाया। मदर टेरेसा ने 24 मई 1937 को अंतिम प्रतिज्ञा ली। नन की प्रतिज्ञा लेने के बाद उन्हें मदर की उपाधि दी गई। इसके बाद वे पूरे विश्व में मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मानवता की महान प्रतिमूर्ति और शांति की दूत कहलाने वाली मदर टेरेसा 120 से अधिक देशों में मानवीय कार्य के लिए जानी जाती हैं। दीनहीनों का फरिश्ता कहलाने वाली मदर टेरेसा को आज ही के दिन कैथोलिक संप्रदाय का संत घोषित किया गया था। और अब आइए कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा अंतराल।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: श्रोताओं, ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। उन्होंने अपनी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में शानदार अभिनय के लिए 1970 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया था। उन्होंने 1973 और 2000 के बीच 92 फिल्मों में रोमांटिक लीड के रूप में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 1952 में आज ही के दिन यानी 4 सितंबर को जन्म हुआ था हिंदी फिल्मों के नायक ऋषि कपूर जी का। उन्हें याद करता है आकाशवाणी का बिलासपुर परिवार।

0: आज सुबह।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम गांधी चर्चा। आज विषय है कोई कार्य छोटा नहीं होता। वाचक हैं हरिश्चंद्र वाद्यकार।

गांधी जी किसी भी कार्य को तुच्छ या छोटा नहीं मानते थे। उनके लिए प्रत्येक कार्य समान थे। उनका मानना था कि काम का कोई मापदंड नहीं होता। गंदगी फैलाने पर उसे साफ करने का दायित्व भी हमारा ही है। फिर भला सफाई में शर्म कैसी। नोआखली में गांधी जी पैदल घूम घूम कर दुखियों के आंसू पोंछते और उन्हें जीने की प्रेरणा देते थे। वे उस आग में स्वयं अकेले ही घूम रहे थे, क्योंकि वे लोगों के मन से डर को निकाल देना चाहते थे। वहाँ की पगडंडियाँ इतनी सक्रिय थीं कि दो आदमी एक साथ नहीं चल सकते थे। उसके ऊपर वे इतनी गंदी थीं कि जगह जगह थूक और मल पड़ा रहता था। यह देखकर गांधी जी को दुख तो होता, परंतु वह फिर भी चलते रहते। एक दिन वह वहाँ से गुजर रहे थे कि उन्होंने सामने मैला पड़ा देखा। गांधी जी रुके और उन्होंने आसपास से सूखे पत्ते इकट्ठे करके स्वयं अपने हाथ से वह मैला साफ कर दिया। यह देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। मन्नू कुछ पीछे थी। पास आकर जब उसने यह दृश्य देखा तो उसने क्रोध में गांधी जी से कहा, बापूजी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने यह स्वयं क्यों साफ किया? आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? गांधी जी ने हंसकर कहा, तू नहीं जानती, ऐसा कार्य करने से मुझे खुशी मिलती है। तुझसे कहने की अपेक्षा अपने आप करने में कम तकलीफ होती है। मनु ने कहा, किंतु गांव के लोग देख रहे हैं। गांधी जी ने कहा, इस बात से लोगों को शिक्षा मिलेगी। कल से मुझे इस प्रकार के गंदे रास्ते साफ नहीं करने पड़ेंगे। यह कोई छोटा कार्य नहीं है। गांधी जी के सिद्धांत में था कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। और अब आइए सुनते हैं ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा, विषय था कोई कार्य छोटा नहीं होता, और वाचन स्वर हरिश्चंद्र वाद्यकार का। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें, गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10 बजे। आज इसमें आप सुनेंगे बांस गीत, प्रसंग होगा राजा महर सिंह का किस्सा, और गायन स्वर सेवक राम यादव, देव नारायण, रामनाथ यादव और साथियों के। साथ ही सुनेगा पंडवानी में प्रसंग माता गंगा और शांतनु विवाह का किस्सा, और स्वर होंगे अक्ति निषाद और साथियों के। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का, प्रसारण समय सुबह 11 बजे। कार्यक्रम इनसे मिलिए सुबह 8:30 पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। रायपुर केंद्र से ही रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार।

शनिवार सुबह 9:55 पर और 11:55 पर। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय सुबह के 7:30 हुए हैं। डीजे पेश है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से।

मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: मुगले आजम फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और धुन तैयार की थी नौशाद ने।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब

0: लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों का गाया गीत आपने सुना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हेमंत कुमार और फिल्म का नाम था मिस मैरी। यादों के झरोखे से कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स

के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: ब्लफ मास्टर, इस फिल्म का गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वर में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।
1: रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे RBI आपकी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का ख्याल रखता है।
2: अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स वो बैंक खाते हैं जिनमें 10 साल या उससे ज्यादा अरसे तक कोई लेन देन नहीं हुआ। ऐसे खाते RBI के DEA फंड में मुंतकिल कर दिए जाते हैं। आप अपने बैंक के किसी भी ब्रांच पर जाकर KYC अपडेट करें और अपनी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स रकम का दावा करें।
3: RBI कहता है, जानकार बनिए,
2: सतर्क रहे।
4: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। शागिर्द फिल्म के इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सूचना सुनिए। छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ आईटीआई प्रवेश काउंसलिंग 2026-27 के 8वें चरण की शुरुआत की गई है। पंजीकरण तिथियां हैं 3 सितंबर से 5 सितंबर 2026। मेरिट एवं चयन सूची के लिए तारीख है 6 सितंबर 2026। प्रवेश तिथि 7 सितंबर 2026। सीट उपलब्धता के अनुसार मेरिट के आधार पर सीधे प्रवेश दिया जाएगा। पात्रता ट्रेड के अनुसार 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास है। इसे आप देख सकते हैं cgiti.admissions.nic.in पर। सूचना समाप्त हुई।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: श्रोताओं, श्री कृष्ण ने सहज भाव से जीवन जीते हुए समाज को प्रेम, बंधुत्व और करुणा का संदेश दिया। उनका विराट स्वरूप भारतीय दर्शन में जीवन को देखने की एक ऐसी दृष्टि देता है जिसमें प्रेम और कर्म, भक्ति और ज्ञान, नीति और लोक मंगल एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वे जीवन से पलायन नहीं बल्कि जीवन के संघर्षों के बीच धर्मपूर्वक खड़े होकर कर्तव्य का निर्वाह करने की प्रेरणा।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था खानदान। और इसी के साथ पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी बिलासपुर है। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज़ थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया।

0: 05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भूकक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की डीएनए जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के डीएनए से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together. to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries.

0: as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram par AIR News Alerts ko follow kare.
2: सब के लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404IN20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट एट AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
4: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की एआई जेनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। एआई को नहीं किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने एआई सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस इट्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-05 ऑन बोर्ड GSLV F7।

0: श्रोताओं, आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु आपसे रूबरू हो रहे हैं आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से। तो सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर भारती बंधु पिछले 50 सालों से कबीर भजन और सुफियाना कलाम के क्षेत्र में विख्यात हैं। डॉक्टर भारती बंधु छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं और आपको वर्ष 2015 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। तो आइए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इनसे मिलिए में। तो बातचीत की शुरुआत सबसे पहले यहीं से करते हैं कि आपका जन्म कब हुआ और कहाँ की पैदाइश है आपकी।
1: साहेब बंदगी साहेब नमस्कार, वंदे मातरम। आज वाकई बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आकाशवाणी के माध्यम से अनेकों अनेक सुदूर अंचल तक श्रोताओं को हम संप्रेषित हो पा रहे हैं, अपनी भावनाओं से अपने विचारों से अवगत हो रहे हैं। इसके लिए आकाशवाणी और उदय जी धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। आपके सवाल की मेरी शिक्षा दीक्षा, मेरी पैदाइश, मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और वो जगदलपुर बस्तर के रहने वाले थे। हम लोग बस्तर के हैं। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटिंग में गए और स्वतंत्रता के बाद में रायपुर सेटल हो गए। हमारी पैदाइश रायपुर की हुई, हमारी पैदाइश रायपुर की, हमारी शिक्षा दीक्षा रायपुर की। और बड़े ही आज मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस जगह हम बैठ के आज जो बात हो रही है, मेरी संगीत की तालीम जो है, प्रारंभिक शिक्षा मेरे पिताजी से हुई घर से, और संगीत की जो घरानेदार तालीम है, सीना बसीना तालीम, उस्ताद आशिक अली खान साहब सारंगी नवाज किराना घराना से, जो यहीं आकाशवाणी में थे, उनसे मैं गंडावन शागिर्द हूँ। आज मेरे लिए किसी तीर्थ की यात्रा के समान अनुभूति हो रही है, सुख की अनुभूति हो रही है। आज ये स्थान जरूर है, मेरे उस्ताद लौकिक रूप से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अलौकिक रूप से उनका आशीर्वाद मेरे साथ में है। और इसी रायपुर में मैंने 15 साल तक सूफी की तालीम भी ली है। सूफी जो ओरिजिनल महफिल सीमा जिसको कहते हैं, वो सूफी संगीत की भी तालीम मैंने 15 साल तक किसी रायपुर में लिया मैं।
0: जी जी। तो जन्म पर फिर लौटते हैं, कब हुआ आपका, किस सन में?
1: देखिए, विगत 57 साल से मैं सांगीतिक यात्रा में हूँ। भक्ति संगीत मेरे परंपरा में चले आ रही है। हमारे यहाँ दोनों धाराओं की भक्ति होती थी, सगुण की और निर्गुण की।
0: जी।
1: मेरे पिताजी तक हमारी जो भक्ति संगीत है, किसी धार्मिक अनुष्ठान में या किसी मंदिर में ही किया जाता था। हम लोगों ने इसको जनमानस में लाने की कोशिश की है। मैं 5वीं पीढ़ी हूँ, मेरा बेटा 6वीं पीढ़ी है।
0: अरे वाह।
1: तो हम लोगों ने अपनी परंपरा को बचाए रखा है, अपनी संस्कृति को बचाए रखा है। जिस समय सांगीतिक संक्रमण चल रहा था, उस समय भी हमने कंप्रोमाइज नहीं किया और हमारे भक्ति संगीत को हम संजोए संवर्धन और संरक्षण करते रहे हम।
0: यानी कि जन जन तक पहुंचाने के लिए ही आपने जो सगुण विचारधारा है उससे हटकर निर्गुण विचारधारा को भी अपनाया और उसमें अपना गायन क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ाया।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में क्या होता है कि हम जैसे जैसे बौद्धिक विकास बढ़ता है तो हम अक्ल की चतुराई में फंस जाते हैं और जो मूल बात है उसके तरफ से हट जाते हैं। हम लोग इस चक्कर में आ जाते हैं कि ये सगुण है, ये निर्गुण है, ये सगुण है, ये निर्गुण है। तो निर्गुण को समझने के लिए सगुण के माध्यम से ही आपको यात्रा करनी पड़ेगी, तब जाके आप निर्गुण को समझ पाएंगे। अब एक बच्चा पहली में भर्ती हुआ, फिर उसके बाद में वो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पास करेगा, तब जा करके प्राइमरी से मिडिल में जाएगा, मिडिल से फिर हाई में जाएगा, हाई से फिर हायर सेकेंडरी जाएगा, फिर उसके बाद में कॉलेज में दाखिला लेगा। ये एक क्रम है, एक सीढ़ी है। निर्गुण और परा में जाने के लिए सगुण का माध्यम बहुत जरूरी है। सद्गुरु कबीर साहब

0: के समकालीन एक संत हुए हैं पीपा साहेब
1: जी।
0: वो कहते हैं कि सरगुण मीठो खांडसो निर्गुण कड़वा नीम और सदगुरु जो परस दे निर्भय होके जीम। आप इस चक्कर में ना रहें,
1: बहुत गहरी बात,
0: सगुण और निर्गुण के चक्कर में ना रहें। एक दिन आपको अगर कि निरंतर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक दिन आपकी कॉलेज भी आप पास कर लेंगे, पीएचडी डिलीट और एमफिल ये कर लेंगे आप निरंतर रहेंगे तो, और ब्रेक हो गया तो फिर वहीं खत्म हो गया।
1: जी जी जी साहब, एक ये भी बात कही जाती है कि जो निर्गुण भक्ति की धारा है वो बड़ी रहस्यवादी धारा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, उसमें समझने के लिए बहुत गहराई तक उसे में उतरना पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कबीर साहब ने जो बाणी कही है बहुत सीधे तौर पर कही है, कहीं कुछ ऐसा दबाव लुकाव छिपाव
0: नहीं,
1: कहीं
0: नहीं,
1: कोई
0: नहीं।
1: गुंजाइश नहीं है उनकी। तो कबीर बाणी की ओर आप किस तरह से मुड़े, कैसे आप प्रभावित हुए?
0: देखिए, हमारे परंपरा में भक्ति संगीत के दोनों धाराएं समाहित हैं, सगुण और निर्गुण। हमारे पिताजी जो मेरे प्राथमिक गुरु हैं और साथ साथ मेरे आध्यात्मिक गुरु भी हैं, उनसे बातचीत और उनसे सत्संग में हमको ये सब चीजें पता लगी। और कबीर का जो रहस्यवाद है, हाय हाय हाय हाय, मलमल धोए शरीर को धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल का बैल।
1: क्या बात,
0: बड़ी सीधी सादी बात आपने जैसे कहा कि बिल्कुल वो कोई लाग लपेट नहीं, सीधे सीधे जो देखा वो कह दिया। आप बाहरी आवरण को तो धो रहे हैं, अंदर को की सफाई कैसे करेंगे? और अंदर की सफाई जो है यही सूफिज्म है और यही अध्यात्म है।
1: बिल्कुल,
0: हम कैसे करके अंदर झांकेंगे? ये यात्रा जो किया होगा वही तो दिखाएगा ना अंतर्मुखी होना। तो इसलिए सदगुरु के शरण में जाना जरूरी है, और सदगुरु आपको बताता है कि तुम्हारे अंदर इस तरह से प्रवेश करो और जो मैल है उसकी सफाई करो। सदगुरु परमात्मा जो है, जिस किसी का भी सदगुरु है, वो आपको गू माने अंधारा और रू माने उजाला, अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने की प्रक्रिया को गुरु कहते हैं।
1: वाह क्या बात।
0: और जो इन सब चीज को निरंतर करते रहे तो स्वाभाविक एक दिन आपका मोक्ष अवश्य संभावी है। गुरु के आज्ञा आत है, गुरु आज्ञा से जाए, कबीरा वो नर संत है और आवागमन नसाए। मात्र गुरु के आदेश के परिपालन करने से आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं 84 के चक्कर से।
1: सुफियाना कलाम और कबीर भजन की ओर आपका रुझान कैसे हुआ?
0: मैंने कहा कि मेरे उस्ताद यही थे। मेरे उस्ताद एक भजन गाते थे, बहुत ही प्रचलित भजन है कबीर साहब का, मन लागा मेरो यार फकीरी में। तो वहां एक शब्द है, मन लागा मेरो यार फकीरी में। यार से कैसे फकीरी होगी, ये बात मुझे अक्सर आंदोलित करता था। अब मैं परेशान रहता था कि यार की फकीरी क्या चीज है। तो कई वर्षों के बाद पता लगा कि ये फकीर किसको कहते हैं। फकीर चार लेटर से बना है, चार हरूफ से। पहला फे, फे से फाके, खाया है तो ठीक, नहीं खाया है तो ठीक। दूसरा काफ, काफ से सबरो कनात, परमात्मा तू जिस हाल में रख तेरी कृपा। तीसरा है ए, ए से यादे इलाही, हर समय परमात्मा की याद से जुड़े रहो, उससे एक पल भी गाफिल ना हो। और चौथा है रे, रे से रहम। जिनमें ये चार बातें हैं वो है फकीर।
1: बहुत अच्छी व्याख्या किया।
0: तो वो क्या है, ये बात जब मुझे पता लगी कि फकीर ये है, तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। सत्संग किया, संतों की वाणी का अनुसरण किया और विद्वानों के सत्संग किया, उनसे विचार विमर्श किया, तो यार की फकीरी जो है जीवन का सही अर्थ वही है। हमारे यहाँ भारत में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जो पूरे विश्व उनको जानता है और मानता है, आचार्य रजनीश ओशो
1: जी।
0: उनके भी एक वाक्य है कि जिंदगी के हर पल को उत्सव की तरह मनाएं। और कबीर साहब का भी विचार दर्शन वही है, जो आप संसार में आए हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रो।

0: रोए। जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके रोने की आवाज सुनकर के लोग खुशियां मनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो के हम हंसे जग रोए। जिंदगी के हर पल को उत्सव की तरह मनाना, आनंद से मनाना, ये जीवन के एक तरह से आध्यात्मिक यात्रा है। ये
1: बिल्कुल जिंदगी की फिलॉसफी यही है
0: जी। बिल्कुल
1: जी जी।
0: तो ये सब चीजें जो है मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी कि बरसों गुजर गए लेकिन इसको समझने में,
1: बिल्कुल
0: एक दो साल नहीं कई बरस गुजर गए, तब धीरे धीरे कुछ बूंदें कुछ चीजें प्राप्त होने लगी ईश्वर की कृपा से, तब जाकर के ये यहां तक पहुंचने का अवसर मिला है।
1: जी, बहुत गहरी तपस्या है ये भी।
0: 57 साल से निरंतर इस कार्य में मैं लगा हुआ हूं।
1: जी जी। अच्छा साहब, हम जो अभी का समाज देख रहे हैं,
0: जी जी,
1: बड़ा बिखराव है, बड़ी टूटन है, हताशा है, निराशा है समाज में, तो कबीर की वाणी या सूफियाना कलाम इस हताशा इस निराशा को दूर करने में कहाँ तक सहायक हो सकती है?
0: देखिए साहब, आज का जो वातावरण है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की ही दुख नहीं है, पूरी दुनिया, जिधर देखो पूरी दुनिया जल रही है,
1: हाहाकार मचा हुआ है,
0: कोई धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, कोई वर्चस्व के लिए लड़ रहा है, और इस लड़ाई में प्रकृति के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, और प्रकृति जब नाराज हो जाती है तो फिर प्राकृतिक आपदाएं भी होती है, तो कुल मिलाकर के मानव समाज त्रस्त हो रहा है। मानव समाज अपने उद्देश्य से भटक गया है, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको छोड़ करके अन्य काम कर रहा है। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, लोगों के सुख से दुखी है। ऐसे समय में जहां जितना हिंसा हो रही है ये इतनी पराकाष्ठा पे आ चुकी है कि ऐसे समय में केवल और केवल संतों की वाणी ही समाज को सही दिशा और मानव मूल्यों का उत्थान के लिए, केवल और केवल कबीर साहब की वाणी और विचार ही, और दीगर संतों की वाणी, जैसे कबीर साहब ने कहा है कि आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार, आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जग में तो जल जाता संसार।
1: कितनी सटीक बैठती है ये बात।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वर्तमान परिवेश हम देखें, माहौल देखें
0: जी,
1: तो
0: जी, जी, जी।
1: यानी हमको और समाज को, यहाँ कहें समाज को विवेकशील होना बहुत जरूरी
0: है। बहुत विवेकशील होना जरूरी है। हमारे छत्तीसगढ़ में कहना है, कबीर साहब की एक वाणी है कि पानी पियो छान के, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के।
1: वाह क्या बात है, यही तो विवेक है।
0: यही विवेक, आपको विवेकशील होना पड़ेगा। जानना के मतलब ये विज्ञान है, और क्या है ये विज्ञान, और क्या होना चाहिए ये आदर्श विज्ञान है, व्हाट इज एंड व्हाट आर टू बी।
1: वाह क्या बात है।
0: तो ये आज समाज की आवश्यकता है। निसंदेह मैं विज्ञान के समर्थन में हूं, विज्ञान होना चाहिए, विकास होनी चाहिए, किंतु हम मंगल में जा रहे हैं जीवन को खोजने के लिए, जीवन में पहले मंगल को खोजो।
1: अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया।
0: जब जीवन में मंगल होगा तो सारे तरफ मंगल ही मंगल होगा, सारे अमंगल खत्म हो जाएंगे।
1: यही तो आनंद है।
0: यही आनंद है
1: जी जी।
0: और यही आनंद जब द्विगुणित होता है तब परमानंद मिलता है।
1: बहुत बढ़िया बात। तो चलिए बातचीत तो और भी हम करेंगे, यहाँ तक तो बड़ी अच्छी बातें हुई हमारी, जीवन दर्शन पे हम बात कर रहे हैं, धर्म आध्यात्म की बातें हो रही हैं आपसे, और अब एक सूफियाना कलाम आप सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को या कबीर भजन?
0: आपको कबीर साहब की एक वाणी सुनाता हूँ
1: जी, स्वागत।
0: अभी अभी मेरे एक एल्बम रिलीज हुआ है, साहेब तेरा भेद न जाने कोई
1: जी, स्वागत।
0: तो उसके एक स्थाई एकांतरा सुनाता हूँ।
1: बिल्कुल स्वागत है।

0: साहे बंदगी साहे।
1: कबीर साहब की बहुत ही मीठी वाणी का आपने यहाँ गायन किया और उतनी ही मीठी आपकी आवाज भी है और साथ में छठवीं पीढ़ी के जो गायक हैं सीवी वाचस्पति भारती जो आपके साथ हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी पार्श्व में जो अपनी आवाज़ दी वो भी वाकई बहुत अच्छी आवाज़ है।
0: धन्यवाद।
1: तो हम अपनी बात को यहाँ आगे बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और जिस तरह से हम सामाजिक समरसता की बात कर रहे थे
0: जी,
1: तो उसके लिए आप तो अपने गायन को आपने दूर दूर तक पहुँचाया है, विदेशों तक की यात्राएं की हैं, तो अब तक सामाजिक समरसता की ये बातें ये वाणी आप किन किन देशों तक लेके गए हैं?
0: देखिए कबीर साहब समग्र मानव समाज के लिए हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, कबीर पंथियों के लिए ही नहीं है, समग्र समाज के लिए है,
1: सबके साझा है,
0: पूरे मानव समाज के लिए है। हमने अभी तक दुबई से मॉरिशस, उसके बाद अफ्रीका के 5 कंट्री, फिर उसके बाद रशिया, यूनाइटेड रशिया के 5 कंट्री में हम गए थे,
1: सोवियत संघ
0: में, और उसमें भी एक ऐसे जगह में गए थे जहां आज भी तनाव है, जो चेचेनिया बोस्निया का जो इलाका है। हम जब एयरपोर्ट में उतर रहे थे, लैंड कर रहे थे, तो लैंडिंग के टाइम में कहीं पे मोर्टार पड़ा हुआ है, कहीं पे जीप पड़ी हुई है, कहीं पे टैंक पड़ा हुआ है, इस तरह से आज भी वहाँ पे तनाव है। वहाँ भी हमने कबीर साहब की और सूफियों की वाणी को वहाँ पे फैला के आया है और लोग बड़े आनंद उठाए हैं उसका।
1: जी जी, कैसा प्रतिसाद रहा वहाँ पे बाहरी देशों में?
0: कभी कभी किसी कलाकार के जीवन में ऐसा अनुभव होता है,
1: जी जी,
0: 1.5 घंटे के कार्यक्रम में 1 घंटा लोग लाइन लगा करके ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ ले रहे थे।
1: क्या बात।
0: और आपके प्रश्न से मेरे को वो पूरा दृश्य दिखने लग गया, पूरा ऑडिटोरियम पैक भरा है, कोई बंदा नीचे बैठा नहीं है, सबके सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। ये सदगुरु की कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है।

0: जो भी अच्छाई है वो सब हमारे गुरुजनों की कृपा है, और जो खामियां हैं वो हमारी हैं।
1: बहुत बड़ी बात है ये।
0: तो इस तरह से हमने देश विदेश में अनेकों कार्यक्रम किया है, 10,000 से अधिक कार्यक्रम किया है। उसमें 37 जेल हैं जिसमें तिहाड़ जेल भी शामिल है। विगत 22 जून 2014 से लेकर 15 जनवरी 2015 तक छत्तीसगढ़ के 33 जेलों में हमने कबीर सद्भावना यात्रा करी है, कबीर गायन के माध्यम से।
1: अरे वाह,
0: कैदियों को हमने अपना कबीर सुनाया और लोगों में सद्भावना और समरसता और मोहब्बत की बात हमने प्रेरित की उनसे, और वहाँ से हमको कुछ फीडबैक भी मिला कि लोगों में कुछ परिवर्तन आ रहा है।
1: कितनी अच्छी बात है ये। कैदी भी हमारे समाज का एक हिस्सा ही हैं, और वो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अगर मुख्य धारा में समाज की आना चाहते हैं तो उसके लिए निसंदेह हम जितना भी प्रयास कर सकें वो
0: बिल्कुल
1: कम है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और आप उस दिशा में इतनी कोशिश कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की जेलों में जाकर आपने ये बातें कहीं, तो वाकई ये बहुत अच्छी बात है।
0: उस यात्रा में जेलों में जघन्य अपराधी और घोर नक्सली भी उसमें शामिल थे। सामान्य रूप से गए वहां पे, उनके बीच में बैठ के गाना बजाना किया, उनके साथ फोटो खिंचाई, उनसे बातचीत की। तो जेलर और सुप्रिंटेंडेंट कहने लगे कि बोले सर, ये हम इतने सालों से देख रहे हैं, मानो ये मुस्कुराना जानते ही नहीं, भूल गए हैं, लेकिन आपके कार्यक्रम से ये नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, ताली बजा रहे हैं,
1: क्या
0: मुस्कुरा
1: बात
0: रहे
1: है।
0: हैं, हंस रहे हैं, एक नई ऊर्जा का संचार करके आप यहाँ जा रहे हैं। तो मैंने बोला मेरे जीवन का उद्देश्य यही है, मेरा लक्ष्य यही है, मैं ये करके जा रहा हूँ, ये मेरे जीवन की सफलता है ये।
1: जी। तो साहब, बहुत अच्छी बातें आपके साथ हो रही हैं। यह एक बात पर और हम आपके विचार जानना चाहेंगे।
0: जी
1: जैसे कि समाज में बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे वाद होते हैं, इसे लोग अपनाते हैं। अगर हम बात करें विचारधारा की, तो हम पहले बात कर रहे थे सगुण और निर्गुण
0: निर्गुण
1: विचारधारा
0: की
1: की,
0: जी
1: भक्ति काल के दौर में,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: उसके बाद भी अब चली आ रही वो परंपरा। तो इसके बावजूद एक पक्ष ऐसा भी है जिसमें मानवता का बहुत गूढ़ महत्व होता है, और संतों ने भी यही जो उपदेश है वो दिया है अपने समाज को। तो इसकी अभी कितनी जरूरत है इंसानियत की, मानवता की, हमारे समाज
0: आज
1: में।
0: केवल और केवल इंसानियत और मोहब्बत की ही जरूरत है।
1: जी
0: बहुत कत्लोगारत हो चुका, बहुत हिंसा हो चुकी, बहुत नफरत हो चुका, अब मोहब्बत का समय है। अब अगर मोहब्बत नहीं करेंगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी, और इतनी खूबसूरत दुनिया को तबाह करने का श्रेय आपको जाएगा। आप जीवन भर, जब तक के संसार ये एक अनंत ब्रह्मांड है, कई बार इसका जन्म हुआ है, कई बार इसकी मृत्यु हुई है, हर बार आप शर्मिंदा रहेंगे यदि आपने अपने आप में सुधार नहीं किया तो।
1: लेकिन चिंता का विषय यहाँ ये भी है कि कबीर साहब ने कहा है, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए,
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: लोग क्यों नहीं समझ पा रहे उस चीज को।
0: देखिए, नहीं समझ पाने के पीछे कारण ये है कि कई जन्मों का संस्कार है ये। मैं अपने घर में अपने बच्चों को बोलता हूँ, जो सिखाता हूँ वही वो सीखते हैं। स्कूल में 4 घंटा रहते हैं, बाकी समय मेरे पास रहते हैं, तो मैं जो बोलूँगा, जो सिखाऊंगा, जैसे उठूंगा, जैसे बैठूंगा, जैसी बातें करूंगा, तो वो उनके ऊपर उसका असर दिखेगा। तो मानव समाज की जिम्मेदारी है कि आप अपने जो जो करना था कर लिया, अपनी जनरेशन को कम से कम सुधारें, उनको जातो धर्म की पचड़े में ना पड़ाएं। धर्म जो है धारियति धर्म। कबीर साहब की एक वाणी है कि सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। तो आपको जहां अच्छी बातें मिलती है उसको उठा लें, और जो आपके काम के नहीं है या आपको अच्छा नहीं लगता, आप उसको छोड़ करके अलग हो जाए। अब उसका एक उदाहरण ये है कि आपके पास एक चुंबक है, चुंबक को आप जमीन में घुमाइए, जो लोह तत्व है उसको ही वो
1: आकर्षित करेगा।
0: आकर्षित करता है, खींचता है। तांबा है, पीतल है, सोना है, चांदी है, उसको वो नहीं छूता है वो। तो आप अपने काम की चीजें करिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होए।
1: बहुत अच्छी बात।
0: प्रेम न बाड़ी उपजे के प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे शीश दे ले जाए। आज इसकी सौदा करने का समय है। एक सूफी शायर कहता है कि कोई भी रस्म मोहब्बत का निभा कर देखो, कोई भी रस्म मोहब्बत का निभा कर देखो, राह में दीप मोहब्बत का जला कर देखो, कितना सुख मिलता है मालूम नहीं तुमको, कितना सुख मिलता है मालूम नहीं तुमको, कभी अपने दुश्मन को भी गले से लगा कर देखो।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: तो आज इसकी जरूरत है, आज ये मोहब्बत की जरूरत है, आज प्रेम की आवश्यकता है। जैसे मुझे जानकारी मिली थी, जैसा मैं समय गुजारता हूँ विद्वानों के बीच में, अरब में एक परंपरा रही कि खुदा का खौफ होनी चाहिए। तो कुछ विद्वानों ने सोचा, यार खुदा का खौफ होनी चाहिए, ये क्या बात हो गई। मौलाना रूम हो गए, शम्स तबरेजी हो गए, और इस तरह के जितने भी संत महात्मा हुए हैं, सूफी संत हुए हैं, उन्होंने कहा कि खुदा तो मोहब्बत की चीज है, वो खौफ की चीज कैसे हो गई। वहां से सूफिज्म का धारा शुरू हुई और वो ईरान के रास्ते से अफगानिस्तान होते हुए, पंजाब होते हुए भारत में दाखिल हुआ। तो जितना सूफिज्म हिंदुस्तान में फला फूला, वो उतना कहीं नहीं है।
1: जी जी जी,
0: आज हिंदुस्तान में अगर इंसानियत मोहब्बत थोड़ा भी बचा है, तो सूफिज्म और हमारे आध्यात्मिक संत महात्मा जो भक्ति काल में जो हुए, सूर, तुलसी, मीरा, नानक, फरीद, बुल्ले शाह, ये उनकी मेहरबानी है। ये भाई मीरा देखिए राजघराने से निकली है और रविदास तक की उनकी यात्रा, ये किसी इतिहास परिवर्तन से कम नहीं है। भक्ति तो बहुत लोगों ने किया है
1: जी,
0: लेकिन मीरा की भक्ति में और आप हमारी भक्ति में जमीन आसमान का अंतर है।
1: बिल्कुल,
0: 800 साल हो गए कोई दूसरा खुसरो पैदा नहीं हुआ, 600 साल हो गए कोई कबीर नहीं पैदा हुआ, 500 साल हो गए मीरा, तुलसी, सूर पैदा नहीं हुए है। क्या किस चीज की कमी रह गई?
1: चिंतन यही तो करना है,
0: चिंतन यही करना है। हम चाहते हैं कि भगत सिंह उनके घर पैदा हो, हमारे घर नहीं। जिस दिन हम ये सोचेंगे कि हमारे घर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद पैदा होना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होनी चाहिए, उस दिन समाज भी बदलेगा, सृष्टि बदलेगी, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। मोहब्बत मेरा पैगाम है, जहां तक पहुंचे,
0: जहां तक
1: ये बात है।
0: बिल्कुल,
1: जी जी, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने सभी श्रोताओं के लिए, और हमें बहुत खुशी हुई कि आज हमारे स्टूडियो में, आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में आप उपस्थित हुए और आपके साथ बहुत सारी बातें हुई, कई विषयों पर हमने बातचीत की और संगीत का रसापान किया। बहुत बहुत धन्यवाद
0: साहेब, नमस्कार,
1: बंदे मातरम।

0: इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध सूफी और कबीर भजन गायक पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु से प्रकाश उदय की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे इनसे मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत ही अगले शुक्रवार यानी 11 सितंबर को सुबह 8:30 पर। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9 बजने वाले हैं। 9:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: तरुण सागर, एलिसा मेंडोसा और लॉय मेंडोसा की आवाज़ों में हाउसफुल का गाना, और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से। कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में ओ रोमियो। इस फिल्म का गाना गुलजार के हैं बोल और विशाल भारद्वाज की है तर्ज।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में ओ रोमियो। इस फिल्म का गाना गुलजार के हैं बोल और विशाल भारद्वाज की है तर्ज।

दोस्तों आज 4 सितंबर है, आज है ऋषि कपूर जी का जन्म दिवस। हालांकि भौतिक रूप से वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी कला के माध्यम से हमारे दिलों में बसते हैं और हमेशा बसते रहेंगे। ऋषि कपूर जी एक सदाबहार अभिनेता थे और सिनी जगत में सदा प्रासंगिक रहे थे और रहेंगे भी। तो चलिए उन्हीं की फिल्म का एक गाना आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है 102 नॉट आउट। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, और अमिताभ बच्चन ने संगीतबद्ध किया है इस गाने को।

0: के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे सूरज पे मंगल भारी इस फिल्म का गाना। श्रोताओं, चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। दोस्तों, आज संगीतकार आदेश श्रीवास्तव जी का जन्मदिवस है। वे अपने सुरीले संगीत के लिए जाने जाते थे और उनका संगीत सुरीला भी होता था और अनूठा भी। आइए उनकी ही फिल्म का एक गाना सुनते हैं। आपको सुनवा रहे हैं राजनीति फिल्म का गाना। आदेश श्रीवास्तव, रोजाली निकलसन और शशि ने गाया इसे। समीर के बोल हैं और तर्ज बनाई है आदेश श्रीवास्तव ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: श्रोताओ, आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर और शहनाज अख्तर की आवाजों में गदर 2 फिल्म से सईद कादरी के है बोल और मिथुन की है तर्ज।

श्रोताओं, गदर टू फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत।

0: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई, डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक सजीले बांके नौजवान की।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके,

4 सितंबर 1952 को राज कपूर के घर जन्मे। पिता राज कपूर और दादा पृथ्वीराज कपूर रजत पट को पहले ही सुनहरा बना चुके थे। दोनों नामी कलाकार थे। महज 3 बरस की उम्र में ऋषि कपूर ने पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 के इस गाने में काम किया था। हमें पता है कि जब आप ये गाना सुनेंगे आपके मन में रजत पट पर 3 बच्चों की छवि जगमगा जाएगी।

0: ऋषि कपूर ने बताया था कि जब श्री 420 की शूटिंग चल रही थी तो उनके पिता ने सोचा कि उनके तीनों भाई बहनों को एक साथ इस गाने में दिखाया जाए, पर पानी में चलते हुए आंखों पर जब पानी की धार पड़ती थी तो ऋषि कपूर रोने लगते थे, इसलिए वो शूटिंग को आनाकानी कर रहे थे। तभी नरगिस जी को आइडिया आया और उन्होंने चॉकलेट का लालच दिया। 3 बरस के ऋषि कपूर चॉकलेट के लालच में इस गाने में चलते रहे। इसके बाद सन 1970 में ऋषि कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर में एक छोटी सी भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: एक किस्सा दादाजी ने सुनाया था, जोकर के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, तो मैं तो बच्चा था 70 में, 18 साल का था, तो अवार्ड मिला तो मैं पापा के पास गया, पापा को मैंने दे दिया अवार्ड, तो बोला तुम जा दादा के पाँव में रख दो। तो मैं गया दादाजी को मिलने, दादाजी ने बहुत प्यार किया, मैंने वो बोला मैंने जीता है और मैंने उनके पाँव में रख दिया। दादाजी वहाँ फूट फूट के रोने लगे। मुझे उस वक्त उस सेंटेंस की गहराई का मतलब मुझे समझ नहीं आया था, जो मुझे बाद में समझ में आया। तो उन्होंने सिर्फ मुझे चूमा माथे पर, कहा कि राज कपूर ने मेरा कर्जा उतार दिया।
0: बतौर हीरो ऋषि कपूर सन 1973 में फिल्म बॉबी के जरिए रजत पट पर आए थे, पर ये कोई सोचा समझा प्लान नहीं था।

0: यकीन मानिए ये सब अचानक हुआ था।
1: जोकर पिक्चर नहीं चली, फर्स्ट पार्ट लोगों ने बहुत पसंद किया, तो वो मैं उसमें एक एडोलेसेंट बॉय था, तो पापा बना रहे थे एक यंग स्टोरी, लव स्टोरी, सही मानो में टीनेज लव स्टोरी बॉबी के रूप में। तो उन्हें एक बॉबी अपनी हीरोइन की तलाश थी, तो जब डिम्पल को शॉर्टलिस्ट किया तो मुझे भी कहा गया कि भाई तुम भी रिड्यूस करो, तुम भी वेट कम करो, मैं तुम्हें लूंगा हीरो। पिक्चर बन रही थी बॉबी, बॉबी कौन था? डिम्पल। मेरे लिए जैसे आज की तारीख में जैसे अब जो भी हीरो के बच्चे होते हैं तैयार किया जाता है फिल्म में हीरो बनने का, तो वो घोड़े में एंट्री करते हैं या मोटरसाइकिल में एंट्री करते हैं, वो वैसे कुछ नहीं था। मैं बाय डिफॉल्ट हीरो था, पिक्चर तो टाइटल रोल तो डिम्पल की थी, डिम्पल वॉज द हीरो ऑफ द फिल्म। मैं बाय चांस मुझे लिया गया, मेरी किस्मत अच्छी थी कि राज कपूर साहब ने घर में बैठा बैठा के वो ले लिया पिक्चर में। उन बीच में पिक्चर खत्म हुई, डिम्पल की शादी हुई, वो इंडस्ट्री छोड़ गई, पिक्चर रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हो गई, पूरा क्रेडिट मैंने खा गया, मैं हो गया बन गया एक्टर।

किसे पता था कि बॉबी के जरिए सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखने वाला ये क्यूट सा लड़का आगे चलकर एक लंबी और रूमानी पारी खेलेगा। दरअसल ऋषि कपूर भारतीय सिनेमा के पहले सबसे लंबी पारी वाले रूमानी हीरो बने। कमाल की बात यह भी है कि ऋषि कपूर की फिल्मोग्राफी की धारा एकदम अलग है, पर उन पर जो गाने फिल्माए गए आज भी रेडियो पर उन गानों की रुपहली यात्रा जारी है। जैसे ऋषि कपूर की दूसरी ही फिल्म जहरीला इंसान का ये गाना।

जी हाँ, सबसे हिट और सबसे रूमानी गानों की दौलत ऋषि कपूर को मिली। हिंदी सिनेमा को हर दौर में एक चॉकलेटी हीरो की जरूरत होती है, एक ऐसे नायक की जरूरत जो दुनिया की तमाम जुल्मतों और परेशानियों के पार हमें सपनों की दुनिया में ले जाए, प्यार के फूल खिलाए। भारतीय सिनेमा उद्योग की इन जरूरतों के लिए ऋषि कपूर 70 के दशक में वरदान बन गए थे। सन 1975

दिलचस्प बात यह है कि डिंपल के साथ फिल्म यात्रा शुरू करने वाले ऋषि कपूर की सबसे शानदार जोड़ी नीतू सिंह के साथ जमी। दोनों ने एक साथ तकरीबन 12 फिल्में की, जहरीला इंसान, जिंदा दिल, खेल खेल में।

ऋषि कपूर और नीतू सिंह लव आजकल, दो दूनी चार और बेशरम जैसी फिल्मों में साथ में नजर आए। दोनों में शुरुआती फिल्मों के समय दोस्ती हो गई थी, दोनों के बीच बहुत बातें होती थीं। एक बार ऋषि कपूर मुंबई से बाहर कहीं शूटिंग कर रहे थे, नीतू की इतनी याद आई कि उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, तुम्हारी बहुत याद आती है। आखिरकार लंबी दोस्ती के बाद 26 बरस के ऋषि कपूर और 21 बरस की नीतू सिंह 22 जनवरी 1980 को परिणय सूत्र में बन गए।

0: सन 1979 में के विश्वनाथ की फिल्म सरगम उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक रही।
1: डफली वाले, डफली बजा।

isso assim. सुभाष खई की फिल्म कर्ज मेरी

बॉबी के 9 बरस बाद 1982 में एक बार फिर से ऋषि कपूर ने अपने पिता के निर्देशन में काम किया। फिल्म थी प्रेम रोग।

इसके बाद राज साहब की अधूरी छूटी फिल्म हिना में उन्होंने काम किया, जिसे उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने निर्देशित किया था।

बीच में एक लंबा दौर आया जब ऋषि कपूर फिल्मों में काम तो करते रहे पर वो असरदार फिल्में नहीं थीं। पर इसके बाद आई यश चोपड़ा की चांदनी।

भी कहा जा सकता है कि हीरोइनों की कई पीढ़ियों के साथ ऋषि कपूर ने काम किया, फिर चाहे डिंपल हूं, नीतू सिंह हूं या टीना मुनीम।

0: सत्रह
1: सत्रह
0: सोलह
2: की हीरोइन जेबा बख्तियार हो।

अपने लंबे करियर में हीरोइनों की कई पीढ़ियों के साथ चॉकलेटी हीरो के रूप में अपने सजीले स्वेटर्स में नजर आते रहे ऋषि कपूर। सोचेंगे

0: तकरीबन साल 2000 से ऋषि कपूर चरित्र अभिनेता के रूप में रुपहले पर्दे पर आने लगे। साल 2004 फिल्म हम तुम, साल 2006 फिल्म फना, इसके बाद नमस्ते लंदन, लव आजकल और पटियाला हाउस जैसी फिल्में आईं, जिनमें उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाई।
1: ये मातम क्यों मनाया हुआ है? मैं महारानी में जिंदा हूं, जाओ जाओ उसे देखो खेलते हुए, जाओ जाओ जाओ तुम सब जाओ, ये ऐसे मुंह मत लटकाओ, तुम जाओ जाओ देखो उसे खेलते हुए, आखिर मेरे नाम मेरी इज्जत से तो खेल रहा है वो, जाओ तुम लोग सब जाओ यहां से, जाओ जाओ। कह दें इनसे मेरा खुद का बेटा मेरा नहीं, ये लोग भी मेरे नहीं, लेकिन ये घर मेरा है, जमीन पे नहीं पीठ पे खड़ा किया इसे, और इन्हें कोई हक नहीं के मेरे सीने पे पैर रखे, दफा कर सबको।
0: साल 2012 में उन्होंने करण मल्होत्रा और करण जौहर के अग्निपथ के रीमेक में रऊफ लाला की शानदार भूमिका निभाई थी।
2: हाँ, यही कमरा है जहाँ सुनाई गई थी कहानी, और यहीं मैंने उनसे कहा था कि तुम पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम पिक्चर फ्लॉप करा दोगे मुझे लोग ऐसे रोल में, मेरी इमेज क्या है, मेरी छाप क्या है, और तुम मुझे क्या देना चाहते हो? नहीं नहीं सर, आप तो बेहतर करें ऐसे वो करूंगा तो सही, मुझे भी मालूम है अच्छा एक्टर मैं करूंगा सही, लेकिन उसे एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए, तो मैंने ना ना करके उसको नकार दिया, मैंने बोला चले जाओ सर, देखो मैंने, उन्होंने हार नहीं मानी, एक महीने लगातार करण जौहर साहब और करण मल्होत्रा जो डायरेक्टर थे पिक्चर के, लगातार मेरे पीछे बने रहे कि आपको तो करना ही पड़ेगा। सही बात यह कमल जी, मेरे में एक्चुअली साहस यानी कि हिम्मत नहीं थी, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था ऐसे रोल करने का, मैंने सोचा कहीं मैं कर लूँ और मेरे कारण पिक्चर ना चले तो लोग बोलेंगे देखो पिक्चर फ्लॉप हो गई ऋषि कपूर की वजह से, और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई किसी को नुकसान हो, मैं जानता हूँ कि एक्टर मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ, मैं निभा लूँगा, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आप, तो मैं एक्चुअली सही मानों में उससे डर रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, तो जब बहुत दबाव आया तो मैंने उनसे सजेस्ट किया कि अच्छे काम करते हैं, एक लुक टेस्ट लेते हैं, यानी कि देखते हैं वो कैसा दिखेगा मेरे में, तो एक कच्चा पक्का हमने लुक टेस्ट लिया, जिससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने थोड़ी हिम्मत बनी, थोड़ा मैंने कहा अच्छा तो मुझे कुछ सीन्स भी सुनाएंगे, फिर मैंने थोड़ा बहुत हिम्मत की और फिर मैंने बोला चलो भाई करते हैं देखते क्या होता है। अब जब फिल्म मुकम्मल हो गई, पिक्चर चल गई, हिट भी हो गई, कुछ बहुत लोगों ने हमारी भी तारीफ की, एक आध अवार्ड भी मिल गया, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसका जो क्रेडिट है ये दोनों करण।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। जन्माष्टमी का पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश में आज से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

प्रदान करेंगी। इनमें छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के शासकीय प्राथमिक शाला खिचड़ी में पदस्थ शिक्षिका सुनीता यादव भी शामिल हैं। वहीं राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर डॉ राजीव चौधरी भी शामिल हैं। शिक्षक दिवस पर कल रायपुर स्थित लोक भवन के छत्तीसगढ़ मंडप में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 64 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को अलग अलग साहित्यकारों के नाम पर दिए जाने वाले स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव उपस्थित रहेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अनुसार प्रक्षेपण के करीब 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियो सिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-05 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी। इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान के तहत रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कल कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कृषि मंत्री रामविचार नेता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में सुरक्षित रहने के लिए जागरूकता और सतर्कता आवश्यक है। श्री नेताम ने लोगों से साइबर अपराध, साइबर ठगी तथा इससे बचाव के लिए जागरूक रहने की अपील की। कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों ने कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों को साइबर अपराध तथा ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय बताए। मुख्य सचिव विकास शील ने कल मंत्रालय में सभी विभागों के भार साधक सचिवों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने, भर्ती नियमों को अद्यतन करने और वर्ष 2027 के लिए पदों की आवश्यक प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कृष्ण मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई है। मंदिरों और घरों में आज रात भगवान श्रीकृष्ण की विशेष रूप से पूजा अर्चना कर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में आज से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और रायपुर संभाग में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायपुर के सिपेट स्थित केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान में बीटेक प्लास्टिक इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए इच्छुक छात्र 5 से 8 सितंबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। दुर्ग में 8 सितंबर को उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में समान नागरिक संहिता UCC के प्रावधानों और इसके प्रभावों पर समूह चर्चा तथा परिचयात्मक बैठक होगी। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में खनिज विभाग की टीम ने रेत और मिट्टी के अवैध परिवहन में संलिप्त 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। जन्माष्टमी का पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश में आज से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। आज आप सुनेंगे बांस गीत में प्रसंग

राजा महर सिंह का किस्सा, गायक कलाकार होंगे सेवक राम यादव, देवनारायण यादव, रामनाथ यादव और साथी। साथी सुनेगा पंडवानी में प्रसंग माता गंगा और शांतनु विवाह का किस्सा। गायक कलाकार होंगी अक्ति निषाद। कार्यक्रम में पहले सुनिए बांस गीत। प्रसंग है देव वंदना संग राजा महर सिंह का किस्सा। कलाकार हैं सेवक राम यादव, देवनारायण यादव, रामनाथ यादव और साथी।

0: गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम की शुरुआत में आपने बांस गीत में सुना प्रसंग देव वंदना संघ राजा महर सिंह का किस्सा। गायन स्वर थे सेवक राम यादव, देव नारायण यादव, रामनाथ यादव और साथियों के।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज
4: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली
5: कार्यक्रम में। अब आइए सुनते हैं पंडवानी में प्रसंग, माता गंगा और शांतनु विवाह की कथा का किस्सा, गायक कलाकार अक्ति निषाद और साथी।

0: सी
1: अच्छा
0: सूचना न पैसा सुंदर मजा के
1: जय हो
0: बाजा गाजा के साथ में नाचत कूदत नगर वासी वितन
1: आय हवई
0: और नगर सेवारा में पहुँचिस ना
1: हो
0: तो राजा संतन हेतन वही नगर वासी के बीच में
1: अच्छा
0: माता गंगा ले जयमाना भी हाउल करा थे का सुंदर राजा हेतन गंगा के गले में जयमाला पहना दी
1: अच्छा
0: और गंगा हेतन राजा के गले में देख के जयमाला पहना दी नगर वासी सुमन के फूल बरसावत है और दोनों जन के सुंदर मजा के आरती उतारत है
1: अच्छा।

0: संतनों की जय हो,
1: जय हो।
0: माता गंगा की जय हो,
1: जय हो।
0: ऐसे सुंदर जयकारा लगा करके भैया,
1: वाह भाई,
0: राजा या रानी पर घा लीजगा।
1: अच्छा,
0: और पर घा करके ना अपन अपन घर की ओर देख दो।

0: पहुंच गए। और राजा संतनु माता गंगा सुंदर अपन घर में आ गएगा।
1: अच्छा,
0: ऐसे ही देख तो हंसी खुशी अपन जीवन नतन बितावत रहे। कुछ दिन बीते के बाद देख तो भैया,
1: अच्छा,
0: माता गंगा हेतन सुंदर गर्भवास में धोन होंगे। एक महीना में एक छाव के,
1: अच्छा,
0: दो महीना में दो छाव के।
1: वाह भाई,
0: इसने इसने 10 महीना छाव लगी तो सुंदर बालक ल जन्म दिए है।
1: अच्छा,
0: और बालक ल जन्म दी तो चेरी लगत
1: है।
0: सुना था बेटी चेरी, तुहार राजा है तन।
1: अच्छा,
0: राज कचेरी में हवा है।
1: हाँ जी,
0: तो तुहार राजा साहेब ल बुला के ला लेते हो कहते हैं। और सूचना ल घल दे देते की ओखर घर में ना सुंदर से बालक है तन जन्म लिए है के रहे।
1: जय हो।
0: चेरी रहे तो माता गंगा के बात लमान गए।
1: हाँ।
0: और दौड़ते दौड़ते दौड़ते दौड़ते राज कचहरी में जहाँ राजा संतनु के सभा लगे रहेगा।
1: अच्छा,
0: अब पहुँचिस ना।
1: हाँ।
0: राजा संतनु देख तो सुंदर दंडवत प्रणाम करे है।
1: जय हो बेटी, जय हो।
0: कहे का बात है बेटी।
1: हाँ।
0: अब कैसे आए है।
1: अच्छा
0: राजा साहेब।
1: हाँ।
0: आप मल्ला माता गंगा हेतन बुलाए हवा
1: काबर
0: आप मन के घर में।
1: हाँ।

0: मैं साहेब है तन कहे तह चल रही बेटी।
1: हाँ?
0: अब ये दिन मैं है आवत हूँ कहे भाई।
1: अच्छा।
0: ऐसे भरे सभा में राजा शांतनु।
1: हाँ।
0: सभा के बीच में।
1: अच्छा।
0: देख तो भैया।

0: सभा में कहे भाई हो, आज के सभा ले यही में ले हमान समाप्त दे कर देते हैं।
1: वाह भाई,
0: काबर की खुशी के मौका घलोक है।
1: हाँ।
0: अब घर कति ध्यान करे घलोक लगते।
1: अच्छा,
0: देखा ले तुमन अपन अपन घर चले जाओ। अब महू अपन घर जावत हम जी। घोड़ा में बैठ के रागी और घोड़ा में बैठ करके
1: अच्छा।

0: और घोड़ा ला घुड़सवार में बांधिक लगी घर के तरफ आकर के आवाज लगाते कहे अवये गंगा अवये गंगा। माता गंगा है तो राजा के बात कसनी बालक ला सुन के थाली में नार फूल सुधा जोर लीजगा
1: अच्छा
0: और जोर करके कहे महाराज ये ले आप मन के पुत्रा
1: अच्छा
0: अब इला गंगा में बहा करके आ जाओ रागी काका राजा है तो राज कचहरी ने हंसी खुशी कह रहा है
1: अच्छा
0: कि आज मोर पुत्रा जन्म लिए है कह के और जब गंगा के बात ला सुनी तो राजा के मन है तन उदास हो गए कहे भगवान यह कैसन नारी है
1: अच्छा
0: जे आज अपन पुत्र गंगा में बहाए बोलत
1: वाह भाई
0: अरे एक हर पुत्र हो ही तो ये ला समझ में आ जाही
1: ये

0: कभी भले बोले भी है बोलत कहत रहे मैं तो।
1: अच्छा,
0: लेकिन यह तो अपन वचन ल पूरा करा थे।
1: प्राण और पुत्र कथे बताइए।
0: ऐसे करके राजा संतन है तन देख तो चिंता में पड़े।
1: हो
0: माता गंगा कथे।
1: हाँ।
0: अरे का सोचा था महाराज?
1: अच्छा,
0: अरे जल्दी से जावाओ। आइए बालक ला आप मन गंगा में बहा करके वापस आओ।
1: जय
0: राजा हेतन वचन बद रहिस गा।
1: हाँ।
0: वो कुछ नहीं बोले सकी। बालक ला सुंदर गोद में धली।
1: अच्छा,
0: गोद में धर करके
1: ये जा।

0: चलते चलते गंगा घाट में पहुँची गा और पहुँची तो बालक ला देख करके
1: अच्छा
0: कलाप कलाप के रोवत है। कहे बेटा आज इतके दिन बताए रहे हीरा, आज के बाद मैं हतोला कौन मेर देखा।
1: वाह भाई,
0: आज के बाद मैं हतोला कौन मेर पहा बेटा की।
1: अच्छा
0: ऐसे रोवत रहे और रो के मन ना शांत कर लीजिएगा।

0: प्रकार अपन सात जन पुत्र ल गंगा में बहा दी।
1: अच्छा।
0: और जब आठवा पुत्र हुई ना
1: जी।
0: राजा संतनु हेतन गंगा ल कहे गंगा तोर कहे मा गंगा।
2: अक्ति निषाद और साथियों का गाया पंडवानी में प्रसंग अभी आप सुन रहे थे माता गंगा और शांतनु विवाह का किस्सा। और इसी के साथ कार्यक्रम गूंजे स्वरगांव के अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं चंद्राणी मुखर्जी और हेमलता की आवाज़ों में फिल्म गोपाल कृष्ण से। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है और इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है हटरी चौक बिलाईगढ़ से खीक राम देवांगन रजनी प्रियंका रेणू और जया रानी ने। तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू बेबी ईशानी छन्नूलाल श्रीवास अनीता श्रीवास। दतरेंगी से भागवत वर्मा लेबई से गुलाब दास मानिकपुरी लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू सुभाषवाड़ भाटापारा से एमएल यादव अजय कुमार अमित आमीन गिरीश करण यादव यहीं से युवान ढाबेस यादव हथबंध नेवधा से सेवक राम टुपेंद्र कुमार तुलेंद्र कुमार और देव कुमार यादव देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्विनी वर्मा गणेश मिस्त्री मया राम रजक पुनेश्वर रजक फानेश्वर रजक मुकेश कुमार रजक यहीं से हाव्या रजक और तानिया रजक डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका गजभिये बेबी अनिष्का तन्मय गजभिये बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता और डिंपल देव

गोपाल कृष्ण फिल्म का गाना अभी आपने सुना, चंद्रानी मुखर्जी और हेमलता की आवाज़ों में। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, दूसरा आदमी फिल्म से। इसे गाया है किशोर कुमार और पामेला चोपड़ा ने। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन तैयार की है राजेश रोशन ने। और इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमला।

साहू, भूपेंद्र दुष्यंत तेजल साहू, मोहन पारा कल्तरा से अभिनव और अभिषेक साहू, ग्राम बुड़गहन से राम दुलारी, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशि कांता प्रजापति, असालतपुरा मुरादाबाद से हैं मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबैर अंसारी, नकुल श्याम मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज़ आप हैं लूत्रा खमरिया से, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत, महावीर वार्ड भाटापारा से हैं श्रीमती अमृता यादव, श्रीमती पार्वती, श्रीमती ईश्वरी, श्रीमती लक्ष्मी और कुमारी प्रेरणा डिम्पी यादव, हथबंध नेवधा से हैं श्रीमती दुलारी, श्रीमती प्रियंका, कुमारी प्रीति, श्रीमती उमेश्वरी और श्रीमती सुनती यादव, हटौद बाजार लाहौद से हैं कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर पटेल, राजकुमारी पटेल।

0: दूसरा आदमी फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और पामेला चोपड़ा की आवाजों में। फरमाइशी फिल्मी गीतों का आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार, ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। सभी को हार्दिक

0: शुभकामनाएं। इस पर्व को सभी बड़े ही हर्ष एवं उल्लास के साथ मना रहे हैं। मंदिरों में श्री कृष्ण झूला का भी आयोजन किया गया है। इस परिपेक्ष में आज हमेशा की तरह वेंकटेश मंदिर में भव्य आयोजन किया गया है। शाम से लेकर अर्धरात्रि तक यहाँ स्त्री पुरुष बच्चों की कतार लगी रहती है। यद्यपि यहाँ पर यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा, फिर भी आप व्यवस्था बनाए रखने अपने दो पहिया वाहनों को व्यवस्थित रखें, न कि सड़कों में अस्त व्यस्त। आज जगह जगह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मटकी फोड़ और मलखम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मटकी फोड़ने वाली टोलियां बाजे गाजे के साथ नाचते गाते चलती हैं, किंतु कुछ टोलियां नियमों के विपरीत डीजे भी बजाते चलती हैं। उन्हें इस संदेश के माध्यम से सख्त चेतावनी है, ये गलती भूल कर न करें। डीजे पर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसको उपयोग करने पर वाहन सहित तत्काल जब्ती की कार्यवाही की जाती है। इसलिए नियमों के अनुसार चलते हुए उत्सव का भरपूर आनंद लेवें। मटकी फोड़ने वाली टोलियां एक ही स्थान पर बहुत अधिक देर तक न रुके। ऐसा करने से यातायात जाम होता है, लोग परेशान होते हैं। साथ ही मटकी बांधकर लटकाने वाली टीम सुरक्षा व्यवस्था आदि की नजर से अधिक ऊंचाई पर मटकी न बांधे, यह खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा टोली के सभी सदस्य यह भी ध्यान रखें रास्ते में फटाके ना फोड़े, यह भी खतरे से खाली नहीं है। मटकी फोड़ते समय बच्चों को दूर ही रखें। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व से जुड़ी वस्तुओं की शहर में तमाम दुकानें लगी हैं। पूर्व में हिदायत के बावजूद कुछ अव्यवस्था संतोषी दुकानदार सड़कों तक अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। सचेत रहें, ऐसे लोगों पर विधि संगत कार्रवाई होना तय है। अतः सभी से अनुरोध है व्यक्तिगत लाभ के लिए पूरे शहर में यातायात अव्यवस्था न फैलाएं। ये विधि और मानवता दोनों के विपरीत है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध है फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आइए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गाना आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। दतरंगी भाटापारा से तुषार वर्मा, लोकेश वर्मा, रोशन वर्मा गांव परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी से हैं। ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेंद्र तुषारनी मसिया अंबागढ़ चौकी से हैं। रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान चांदनी चौक गंडई पंडरिया से। पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, खुशी, रौनक सेन ग्राम दरचूरा से। ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी, दुलौरिन, रेखा, मोतीलाल, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। रिंगनी से दिनेश और करुणा वर्मा। बनियापारा धमतरी से हैं रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और इनका पूरा परिवार। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोआराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, लतेल साहू। मारवाड़ी कुआ भाटापारा से हैं सिया राम और अश्विनी पांडे। सोनाडीह से सुब्रत चौधरी और बेबी अनिशा। रायपुर से हैं नीलू मेघ। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल का गाया विवाह फिल्म का गाना। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

विवाह फिल्म का गाना आपने सुना श्रेया घोषाल की आवाज़ में, और अब आइए सुनते हैं जूली फिल्म का गाना आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार किया है राजेश रोशन ने, और इस गीत को सुनने के लिए पत्र लिख भेजा है चकरभाटा कैंप से रूपचंद सिंघवानी, सपना सिंघवानी, गोविंदा, जयंत, कृपाल, साधना, कंचन, मन्नत, माया, शेरू, अंजू, सुनीत सिंघवानी ने, प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले आप हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से, दतरेंगी भाटापारा से नोखीलाल वर्मा, हीरामणि पारसमणि और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, ग्राम रसेड़ा कलतरा से हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या, डिकेश कुमार, वासु, डॉली, पूर्वेश साहू, लच्छनपुर से हैं विश्वनाथ, पंकज, तिरुपति, धनक्ष और आरु साहू, पौड़ी लाफा से विद्यानंद साहू, त्रिवेणी, एनी, बबली, सुमन, मंटू, मिष्टी, सृष्टि, दृष्टि, गन्नू, गणेश, कान्हा, कृष्णा, अंशु साहू, साहेब शांतिनगर भाटापारा से हैं कुलदीप, संतोष दास, संदीप दास, अजीत दास, कुलदीप, बिरजा, संजना और लक्की।

0: आपकी पसंद कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं ड्रीम गर्ल फिल्म का गाना। अमित ब्रोस और अमित गुप्ता की आवाज़ों में गीत लिखा है कुमार ने, संगीत तैयार किया है अमित ब्रोस ने, और फरमाइश आप सभी श्रोताओं की है। इंदिरा नगर रायगढ़ से हैं शेख अब्दुल सलीम बेगम, परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ, नईम रज़ा। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा, दिव्यांश आरोही और लबी श्रीवास्तव। कोरबी बेलतरा से हैं मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुनीता, सुमित, सोमू, मंजीत, मानस राज। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा और दामिनी वर्मा। श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। ग्राम महम्मदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से हैं रमेश कैवर्त, राजकुमारी और आरती कैवर्त। जहांगीर महेंदा से रामनारायण कश्यप, कविता देवी, कुसुम लता और खुशबू कुमारी कश्यप। उड़नताल दगोरु से हैं श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता जागृति, सरला आकांक्षा और समीर गायकवाड़।
1: गोकुल की राधा चली।

ड्रीम गर्ल फिल्म का गाना आपने सुना, मीत ब्रोस और अमित गुप्ता की आवाज़ों में। गीत लिखा था कुमार ने, संगीत तैयार किया था मीत ब्रोस ने। और इसी के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद खत्म करने की आज्ञा दीजिए सीमा को। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, इस समय सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश
1: और मैं अजीत महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
2: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत।

0: कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
1: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, उषिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
0: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
1: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
0: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे।
1: जी,
0: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
0: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है। उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है।

0: प्रतिक्रिया देने के लिए।
1: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है, उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए।
0: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने एआई से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
0: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें एआई के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए।
0: जी
1: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की।
0: जी
1: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की,
0: जी
1: आज का क्या कार्यक्रम है?
0: जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
1: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
0: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाई, और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही है
0: जी,
1: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाई
0: जी,
1: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती है।
0: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की।
1: जी श्रोताओ, जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की
0: जी,
1: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
0: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
1: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स
0: जी।
1: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
0: तो वे भारत क्यों आए?
1: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए
0: जी,
1: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
0: श्रोताओ, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
1: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
0: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में।
1: जी देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी, समस्या थी गुणवत्ता की
0: जी।
1: तो उन्होंने, यानी सत्यानंद जी ने, अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए
0: जी।
1: शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा,
0: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब के फलों ने बाजारों में धूम मचा दी। उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
1: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
0: जी,
1: न जाने कितने किसानों का जीवन बदल गया। एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें, यानी सत्यानंद स्टोक्स को, हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
0: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओ, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी जी?
1: जी हाँ विमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई
0: जी,
1: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
0: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
1: जी जरूर।
0: श्रोताओ, कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के

0: लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
1: जी, शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं, तो इसीलिए
0: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहाँ भी रहें, यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
1: जी, बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं, तो वहां के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें, जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
0: जी, और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: जी, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
1: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो गिरिधर गोपाल।
0: इस कार्यक्रम में भक्ति मीराबाई के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है और चर्चा की गई है कि आज भी आधुनिक साहित्य उनकी कृतियों के प्रति आभारी है।
2: मेरे तो गिरिधर गोपाल।

0: मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त, उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।
1: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन।
0: इस भक्त कवित्री ने लगभग 1300 भजन लिखे।

0: मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
0: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
2: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
3: अरे देखूं तो? अरे ये तो बारात जा रही है।
2: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा? ये कहाँ जा रहा है?
3: अरे ये दूल्हा है, बिटिया शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
2: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा?
3: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया। पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।

0: का श्रृंगार नहीं करने दूंगी।
1: भाई बता दूंगा ना बेटी।
0: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।
1: बेटी ये श्रृंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
0: सच पापा, ये है मेरा दूल्हा।
1: सच्ची भाई
0: मेरा